0: अबा
1: बुढ़िया नो इस कलरबाइ सर लड़की पुता
2: वही वही
1: जाहिद पुता जगरूत नो सुने या
3: देवाचे
1: बेसाम पुता देवाचे बेसाम देवाचे बेसाम
4: अमित
1: साला कलर को सुने जाहिद पुता संभाला वेलारे अगरा जाहिद पुता